जब गजल का जिक्र होता है एक ही नाम सामने आता है, वो है शहनशाह गजल जनाब तलत महमूद। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनका एक लहजा, हल्की सी आवाज़ में मखमली सी खूबसूरत सी आवाज़, प्यारे मीठे सुरीले फिल्मों के गाने, गज़लें, एक ऐसी आवाज़ जिसको आप घंटों तक सुनते रहो और ऐसा लगता है कि कोई कान में मध जैसा रस कान में चला जा रहा है।